क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। तो मेरा हक है इस पे सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सिर्फ आप प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 7:08।
3: बॉलीवुड।

0: साबित कर रहा तेरा मिनट. इट इज अ ट्यूसडे मॉर्निंग 15th ऑफ सितंबर. वी आर जस्ट गेटिंग गोइंग. हाउ स्पेशल इज दिस ट्यूसडे?
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: टुडे वी विल बी सेलिब्रेटिंग हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. बताओ कैसे? बिकॉज टुडे इज द इंडियन इंजीनियर्स डे. इंजीनियर्स डे की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, चाहे आप केमिकल से लेकर मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी किसी भी टाइप के इंजीनियर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन. टुडे इज द डे टू सेलिब्रेट योर सेल्व्स एंड ऑल द 4 साल की मेहनत एंड मशक्कत दैट यू पुट इन. चाहे आप यूज कर रहे हो अपनी डिग्री या नहीं कर रहे हो, जस्ट लाइक मी, हैप्पी हैप्पी इंजीनियर्स डे, इंडियन इंजीनियर्स डे. और क्यों ये सेलिब्रेट होता है? बिकॉज द फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग विच इज सर एम विश्वेश्वरिया, उनका बर्थडे. आई रिमेंबर देयर इज अ एंटायर म्यूजियम इन बैंगलोर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. एनीबडी हुज बीन टू द विश्वेश्वरिया म्यूजियम इन बेंगलुरु, गिव मी अ कॉल राइट नाउ. 800-1062 कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. ऊंचा लंबा कद फॉरएवर फ्रॉम वेलकम टू द जंगल कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. Which is that one song that can best engineer your morning? Let me know. You can WhatsApp me 054-309-1062. That's the WhatsApp number. And this is the first hour of the show, which is the early morning request. Good morning.

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: Two splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.
4: School's starting soon and we need a car.
5: And books, uniforms, everything.
4: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
6: And what if we need it for a short while?
4: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
0: Big.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। अपनी बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
2: Credit Markets.ae. Credit cards, loans, mortgages. Why make money complicated? Ask me. Creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: School's starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: Are you ready?

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 7:25 on the clock on this Tuesday ki subah. It's been a nice and sunny start to this Tuesday. 32 degrees Celsius, humidity quite high, 67% per, winds blowing at 11 kilometers per hour, highs of 37, lows of 31 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: अरे हुजूर, गुड मॉर्निंग नहीं, गुटन टाग कहिए, बिकॉज वी आर इन प्रेपरेशन फॉर जर्मनी ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप विद टीम बिग टू जर्मनी. जीतने का मौका आपके पास एंड समय निकलता जा रहा है. इट इज वीक 4 ऑफ दिस फैबुलस यू नो कैंपेन एंड वी हैव गॉट अ फ्रेश कॉन्टेस्ट एवरी सिंगल वीक. राइट, इस हफ्ते हम लोग क्या खेलने वाले हैं? वी प्लेइंग द जीके कॉन्टेस्ट. मतलब जी डजंट स्टैंड फॉर जनरल, इट स्टैंड्स फॉर जर्मन नॉलेज. या सो जीके फॉर जर्मन नॉलेज. अगर आप ये कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हैं, इफ यू नो जस्ट अ बिट अबाउट जर्मनी एंड ऑफकोर्स आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप. क्या करना है आपको? बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम टाइप करना है. बिग चेक इन स्पेस योर नेम एट व्हाट्सएप इट टू 0543091062. दैट इज द नंबर 0543091062. यू कुड विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Wo aa gaya. Dekho. Dekho wo aa gaya.
3: Naam hai Sid on the Big Breakfast. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
4: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month flat rate. TNC apply.
5: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 8:07।
1: Bollywood.

0: एस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: School's starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry, I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem, zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: Creditmarket.ae. Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800-ALFRED. Alfred simplifies money.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: Morning is 8:15 on the clock on this Tuesday morning. It's sunny, hot out there, 33 degrees Celsius, humidity at 60%, winds blowing at 11 kilometers per hour, highs of 37, lows of 31 degrees.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये लेजेंडरी लिरिसिस्ट समीर अंजान ने कहा।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: If you're a millennial, then you probably grew up listening to All India Radio, right? And when you did, then every other song was Bol Sameer Ke. So, हाँ, ये वही legendary Sameer Anjaan. उनसे जब पूछा गया कैसा लगा यार, कैसा लगा धुरंधर का के गाने, कैसे लगे? It's like, मेरे को तो ऐसी से लगे, because क्या है, कोई originality तो है ही नहीं, remix पे remix वो छापे जा रहे हैं. So, उनसे पूछा भाई क्या, तो क्या, what is the problem in a remix? A good song, a hit song is a hit song. नहीं, ये ऑन द फेस ऑफ इट, इट सीम्स दैट व्हेन यू आर मेकिंग अ रीमिक्स दैट एक बहुत बड़ा होमाज, एक यू नो रिस्पेक्ट, साइन ऑफ रिस्पेक्ट है टू द क्लासिक्स, बट एक्चुअली पता है आप क्या कर रहे हो, यू आर टैम्परिंग विद द क्लासिक, यू आर डैमेजिंग द स्पिरिट ऑफ द क्लासिक. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समीर अंजान कह रहे हैं. मुझे लगता है कि आई एम काइंड ऑफ टोन बिटवीन दीज टू वर्ल्ड्स के, इज अ रीमिक्स, जब कोई रीमिक्स बनाता है तो इज इट अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट और इज एक्चुअली एन इंसल्ट और टैम्परिंग विद द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल द क्लासिक, लाइक समीर अंजान इज सेइंग. इस बात पर यार एक पोल क्वेश्चन तो बनता ही है ऑन आर इंस्टा 106.2 बिग एफ एम, दैट इज आर इंस्टा हैंडल 106.2 बिग एफ एम, कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. Bandhu 2.0. Now, if you take your own song and tamper with it, then that is not tampering. I feel Pritam ne pehla gana banaya tha, aur dusra gana bhi unhone hi banaya. From Cocktail to this song's coming up. This is The Big Breakfast with me, Sid.
1: Big.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Creditmarket.ae. You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: It is 8:44 on the clock. Let's take a look first of all at 11. Oasis Mall, Sharjah, so jaise aap north jayenge, going towards Sharjah International Airport, there is quite a lot of congestion. Yeah, especially E88 par aapko traffic milne wala hai. And especially in both directions, you'll find traffic. Safe zone ke taraf jata hua traffic aapko milne wala hai. Then there is also 311. Things are looking a bit better. But there's still traffic all the way from Ajman to city center Mirdif and a bit beyond Varka 1. And kuch northbound traffic jo tha, wo abhi bhi hai International City par. And then Dubai Silicon Oasis says going south towards Falcon City of Wonders. So 311 ho sakta hai, to aaj avoid hi karein, because it's one of those days. E11 par you'll find another interchange 1 quite busy as always, heading south going towards Dubai from Sharjah. A bit of congestion still, Trade Center roundabout par on Sheikh Zayed Road heading south. And then 66 par as you get towards Al Jadaf, you'll find 4-5 minute ki there. 44 is also a bit busy going towards Business Bay from D3.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: उसके बाद अक्टूबर इज गोना बी द सीजन ऑफ द कमबैक.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: यह कल मैंने आपको बताया कि डेट फिक्स हो गई है सूट सिल वाले 14th ऑफ अक्टूबर को ग्लोबल विलेज का 31st सीजन इज गोना स्टार्ट या 31st एडिशन ऑफ द ग्लोबल विलेज ऑन द 14th ऑफ अक्टूबर. उससे दो दिन पहले वन अदर रॉकिंग थिंग इज गोना बी रीओपनिंग. दुबई सफारी पार्क इज गोना बी बैक इन एक्शन फ्रॉम द 12th ऑफ अक्टूबर न्यू सीजन. और यहां पर लिव मोर वाइल्ड लाइफ इज गोना बी a platform that is going to be introduced. There's going to be a brand new royal safari experience as well, an exclusive 4 ghante ka private tour, VIP treatment milega aapko, reserved seating, guided exploration, you know, up to 10 guests you can take advantage of that. And then also, you know, conservation, it's not just about going and seeing wildlife, it's also about conserving wildlife at Dubai Safari Park, right? So season 7, successful season 7 ho chuka hai and it's welcomed new animals, and guess what, 143 newborns also have been welcomed at Dubai Safari Park. So it's all happening in the month of October right here on Big 106.2. Here's Jazzy B with Dil Lutia 2.0. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: So what do we know? Partners?

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: All right, I got Dipti with me on the phone line. Dipti Gulani. Hello, good morning.
2: Hi, good morning.
1: इतना ब्राइट एंड चर्पी दीप्ति इसलिए साउंड कर रही है बिकॉज़ शी हैज टू टीनेज बॉयज एंड बोथ ऑफ देम आर इन स्कूल राइट नाउ. मतलब ये चोरी छुपे आपका जो रिएक्शन होता है वो आज रेडियो पे सारे आम हो गया. दीप्ति कैसा लग रहा है आपको इस वक्त?
2: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है.
1: बट 13 एंड 16 वर क्वाइट क्रूशियल एजेस ना. एक मतलब दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स की तरफ आग्रह कर रहे हैं.
2: यस, एक बोर्ड एग्जाम के तरफ और एक एट स्टैंडर्ड के तरफ.
1: एक बोर्ड एग्जाम एंड द अदर वन इज जस्ट बोर्ड इन लाइफ.
2: या ही इज बोर्ड इन लाइफ एंड ही जस्ट यू नो टेक्स द हेल आउट ऑफ मी व्हेन ही कम्स होम.
1: यू नीड, यू साउंड लाइक समबडी हू नीड्स अ वेकेशन यार. मतलब 13 एंड 16 टू बॉयज एट होम, तो हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू यू फील लाइक टेयरिंग योर हेयर आउट? टेल मी.
2: Just a couple of times actually, not much. I'm pretty used to it now.
1: सीधे साधे बच्चे आपके ज़्यादा बदमाशी करते हैं ये. Parents, parents teacher meeting कितनी बार आपको करनी पड़ती है attend and what is the usual response?
2: नहीं, मेरे बच्चे touchwood बहुत सीधे साधे हैं. And they are very like disciplined also.
1: Oh.
2: So yeah, I do feel privileged. Yeah, I mean, manage करना कभी कभी ये हो जाता है. And they are mostly when they are bored, तो उनका favorite pastime है eating. ये बना दो, वो बना दो, ये कर दो, वो कर दो. तो yes, you have to be good in cooking. That's it.
1: मतलब वो दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है.
2: बिल्कुल.
1: बच्चों के मामले में भी ये अप्लाई करता है. I didn't know that. Yeah. So thank you very much. I've got a 2.5-year-old. So this is very valuable advice for me. Okay.
2: Yeah. I think you need to be a hands-on parents once
1: जर्मन नॉलेज कॉन्टेस्ट विद यू. या एक बहुत ही आसान सा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ. अगर आपने सही सही जवाब दे दिया तो यू गोना गेट वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग दिस ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. हाउ डज दैट साउंड?
2: Yeah, sounds really good and really exciting. Hopefully, yeah, I'll get through.
1: ठीक है. So have you been to Germany before or it's going to be your first time? Inshallah.
2: No, it's first time. Yeah, inshallah.
1: ठीक है, चलिए. तो I'm going to ask you the question. 10 seconds for you to answer that question. All right?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: Yes, sort of.
1: Your time starts now. What popular German street food consists of a grilled sausage served in a sliced bread roll? Option A, is it a bratwurst? Option B, is it a taco? Your option C, is it a hot dog?
2: Hot dog.
1: Eh? Phir se suniye options ek bar. Option A, is it the bratwurst? Option B, is it the taco? Or C, is it the hot dog?
2: The first one, the bratwurst.
1: सही जवाब. बोलो बोलो. थैंक यू सेठ.
2: थैंक यू सो मच सेठ, योर स्वीटहार्ट.
1: ऑलराइट, योर नेम गोज इनटू द ड्रॉ. योर वन स्टेप क्लोजर. कैसा लग रहा है? व्हाट वुड इट मीन टू यू दीप्ति अगर आपका नाम इस ड्रॉ में से निकल गया एंड यू विन दिस ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग? बताइए.
2: First of all, it would be really great, actually, you know, because I really need a break from my daily routine of being a mom all time, and it's really tough. But yes, like, you know, this trip would mean a lot because I've never experienced traveling solo, without kids, without family. So how it is to be without responsibilities would be my first time experience. So this really means a lot to me.
1: Amazing, yaar. Aur bacche reh lenge aapke bagair?
2: हाँ, वो तो बस वेट करते हैं कि आप निकलो बस. दे डोंट नीड.
1: और फिर वो
2: डोंट नीड कांस्टेंट मॉनिटरिंग.
1: फिर जो उनकी जो सिफारिशें होंगे कि मेरे को ये खाना है, मेरे को वो बना दो, कौन कौन करेगा? पापा?
2: नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं इधर, वो मैनेज कर लेंगे. अच्छा, उनको रख के जाऊंगी.
1: ओके ओके. ऑल द बेबी सिटर्स आर ऑल इन लाइन, ऑल सेट. यार दीप्ति, यू आर रियली प्रिपेयर्ड इवन बिफोर द ट्रिप. हाँ, फॉर जर्मनी. हाँ, तो चलो ठीक है यार. ऑल द बेस्ट. कीप योर फिंगर्स टोज. आस्क बोथ योर किड्स आल्सो टू कीप देयर फिंगर्स क्रॉस अनलेस दे आर सिटिंग इन एन एग्जाम. ऑल दैट इज कि आपका नाम ड्रॉ में से निकले, क्योंकि अगर निकल गया यू विल बी विनिंग दिस ट्रिप टू जर्मनी. ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट.
2: आई एम सो थैंकफुल टू यू सिड, एंड यू रियली मेड माय मॉर्निंग, एंड गॉड ब्लेस यू.
1: थैंक यू दीप्ति. एंजॉय योरसेल्फ. टेक केयर.
2: यू टू.
1: दीप्ति के द्वारा आप भी मैसेज करते रहो भाई, क्या पता कब नंबर लग जाए, एंड एवरीबडी नीड्स दैट वेकेशन राइट. सो क्या करना आपको, बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम उसे व्हाट्सएप करो 0543091062 पर. कॉन्टेस्ट वैसे ही बहुत ही आसान है, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैं उसको और आसान कर देता हूँ यार. मतलब आपका नंबर लग गया, मतलब आपका नंबर लग गया लाइक ऑन बोथ काउंट. सो क्या करना, एक बार फिर लाइक दीप्ति डिड, बिग चेक इन स्पेस योर नेम, WhatsApp it to 0543091062.
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG, travel partner AFC Holidays, exclusively on Big 106.2. Big 106.2.

0: Radio, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
6: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
9: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: गुड मॉर्निंग, 9:18, इट इज 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 54%, विंड्स ब्लोइंग एट 13 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 36, लोज ऑफ 31 डिग्रीज।
9: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me.
11: Big 106.2.
12: Big 106.2.
9: Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: two best friends, one dangerous mission, and chaos they never saw coming.
1: तुम दोनों हमारे लिए इंटेल कलेक्ट करोगे और इस मिशन का हिस्सा बनोगे.
0: Get ready for Vibe, starring Kunal Kemmu, Preeti Zinta, and Sparsh Srivastava. Directed by Kunal Kemmu.
2: This is the Vibe.
3: Lord, please, मुझे बचा ले.
4: Lord, please, मुझे बचा ले. नास्तिक से आस्तिक बन गए.
0: Vibe, releasing 18th September. Distributed by Al Nisser Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
5: Mini chances with big tickets.
6: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
5: Plus big spin and weekly e-throws.
6: Buy now with bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
8: The Big Mix. Miss kiya gaya?
9: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते.
10: मैंने पूछा था कि अगर आपने 80s वाला ट्रेंड फॉलो किया है या नहीं किया है. मोहित, यस मोहित, बताइए.
11: नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया वो ट्रेंड को.
10: वाओ, हैट्स ऑफ. मतलब ये कोई मिलियन में से एक इंसान निकलता जिसने फॉलो नहीं किया है.
11: क्योंकि हमको पता ही नहीं 80s में हम क्या कर रहे थे. बॉर्न हमारा 92 का है, हमको पता ही नहीं 80s में क्या कौन सी क्या थे, वही पता नहीं है हमको. एक चीज है, अगर इसमें कुछ ऐसा होता ना कि हम 80s में जाके कुछ कर सकते थे तो हाँ, थोड़ा सा गोल्ड या कुछ जमीन वमीन खरीद के वापस आ जाते थे.
10: ओह माय गॉड, मैंने भी एग्जैक्ट सेम चीज कहा था कि अगर 80s ट्रेंड में वापस जाना ही है तो फिर मैं यार 1000 बक्स की मैं लैंड खरीद लेती हूँ.
11: कुछ ना कुछ लेके आते तो इधर जाके 5-10 मिनट में खरीद के वो सब करके वापस आते तो इधर अभी हम लोग कुछ ना कुछ तो होते तो पढ़ाई कर लेते तो शायद कुछ बन जाते, कुछ कर जाते. तो हम भी अपने बच्चे को बोलते कि भाई मैंने ये जमाने में ये पास किया था, तुम अभी कुछ नहीं कर रहे.
8: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
12: It's 9:28 on the clock and let's take a look सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. आपको हल्का बुल्का traffic मिलेगा मुसाफा industrial E30 going towards Rabdan. A bit of southbound traffic also out there. Then there's the usual Mafraq industrial traffic E11 heading north going towards Banias. Everything else seems to be quite smooth flowing in the capital. चलते हैं दुबई Sharjah की ओर. The usual 311 E11 पर a bit of unusual traffic. 311 खास करके all the way till city center Mirdif from Ajman South, from Saudi German in Ajman, you'll find a slow-moving traffic. Good news is कि जो Silicon Oasis वाला traffic था, वो अब clear हो चुका है. Then there's a 44 Alkhel Road पर going towards Business Bay from D3, and also 66 Dubai Alain Road पर going towards Al Jadaf in the direction of E11. You'll find 4 से 5 minute की देर.
8: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Yeah, yeah.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
1: And what if we need it for a short while?
0: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
2: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए. पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: It's 9:43 on the clock on this Tuesday. Ki subah. Let's take a look at 311. Things are looking much, much better. Safe zone se lekar, you'll find traffic up until Muhesna. And then a bit of northbound traffic also going towards Muhesna from city center Mirdif. Slow moving traffic going towards Alwarka 1 as well from Mirdif, and then there is a bit of congestion jo ki Ribat Street par shuru ho gaya as you take that exit from city center Mirdif Festival City ki taraf jata hua ye traffic hai. Then there is 44 par, there is an entire stretch of traffic, D62 wala jo exit aap lenge वहां से लेकर ऑल द वे टू D3, यू विल फाइंड अ बिट ऑफ स्लो मूविंग ट्रैफिक आउट देयर, सो बी केयरफुल. देन देयर इज मैदान स्ट्रीट पे ट्रैफिक है आज. देयर इज आल्सो 71 एज यूजुअल गोइंग टुवर्ड्स दुबई मॉल, यू फाइंड स्लो मूविंग ट्रैफिक एट 75 एज वेल, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रेम.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: गलती ये कर दी मैंने कि 11th स्टैंडर्ड में साइंस ले ली, उसके बाद मैं थोड़ा ज़्यादा ही लॉजिक में ढूंढता हूँ फिल्मों में. दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म हैवान. इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, अक्षय कुमार नेगेटिव रोल, सैफ अली खान, प्रियदर्शन की ये मूवी. It's got 30% on Rotten Tomatoes.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: हाँ, 4.5 भी रेटिंग नहीं है इसकी आउट ऑफ 10 ऑन IMDb. बहुत ज़रूरी है कहना, कहीं आपको लगे कि आउट ऑफ 5 है. बट जैसे मैंने सुना कि एक सोसाइटी का वॉचमैन है सैफ अली खान, और आई मीन somebody who's given the responsibility of the security of that particular building and he's visually impaired, and then nobody's questioning it. तो वहीं सुन के मेरी तो थोड़ी बत्ती गुल हो गई. बट कलेक्शंस के मामले में भी ऑन द थर्ड डे दे जस्ट मैनेज टू कलेक्ट अराउंड 7.35 crores, एंड दे लॉस्ट, नाउ दिस इज द बिग हेडलाइन राइट, दे लॉस्ट 1400 स्क्रीन्स टू हनुमान अंश. जो फिल्म 2 crore में बनी एंड इट्स मेड 300 crores ऑलरेडी. सो इट्स ऑल हैपनिंग. आई मीन दिस इज द रिटर्न ऑफ कॉन्टेंट की बात हो रही है. एंड जो रीमेक, ऐसा नहीं है कि हर एक रीमेक इज गोनो वर्क राइट. प्रियदर्शन की ये फिल्म, इट्स अ रीमेक ऑफ दिस साउथ इंडियन फिल्म कॉल्ड ओपम, एंड इट इज नॉट इवन अ शेड ऑन द ओरिजिनल व्हाट एवरीबडी सीम्स टू अग्री ऑन. सो इतना वेट किया यार प्रियदर्शन, इससे अच्छा हेरा फेरी बना लेते.
2: समझा ना मैं जाना.
0: जो भी तुमने हेरा फेरी जी आ रही है कि नहीं, लेकिन ये गाना डेफिनेटली आ रहा है इन जस्ट अ वाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 10:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
2: Mini chances with big tickets.
3: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
2: Plus big spin and weekly e-throws.
3: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Listen to her every day.
5: Mugembo. Khushua.
6: Hi, Ishita.
7: Hi, Mansi.
6: Yaar, ye Disneyland ki DP hai kya? Ruko, how are you? Baad mein karenge. Are you at Disneyland?
7: Yes, Paris.
6: पेरिस एक का ट्रिप लेगी, अब जर्मनी का भी लेगी है. क्या करती हो शिता घुमाई फिराई के अलावा?
7: आई एम अ होममेकर फुल टाइम.
6: वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे, बहुत क्यूट है.
7: थैंक यू सो मच.
6: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों जो है बालक और बालिका पापा के साथ रह लेंगे?
7: दोनों बालिका है.
6: अच्छा, रह लेंगे पापा के साथ?
7: Yes, yes.
6: Very nice. बड़ा अच्छा ट्रेन करा है पापा को इशिता ने. Let's see, आशाम इशिता शॉर्टलिस्ट होती है कि नहीं. Let's see कितनी अच्छी इनकी जर्मन नॉलेज है. All the best. आपका सवाल है, which famous gate in Berlin is one of the most well-known landmarks in Germany? Is it the Golden Gate or the Brandenburg Gate या फिर India Gate?
7: The second option, Brandenburg Gate.
6: तो ये तुक्का लगाया कि पता था?
7: गोल्डन गेट इंडिया में ही है,
6: है? ये बहुत ज्यादा
7: सेकंड ऑप्शन ही है.
6: विदेश यात्रा कर रही है, कह रही है गोल्डन गेट जो है वो इंडिया में है. आपके घर का गेट तो नहीं है?
7: नहीं.
6: आप हो गई है शॉर्टलिस्ट.
7: थैंक यू,
6: कांग्रेचुलेशंस. यू वन स्टेप अवे फॉर दिस चेक इन टू जर्मनी.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata yaar, sunna.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
9: गुड मॉर्निंग, इट इज 10:22 ऑन द क्लॉक एंड लेट्स टेक अ लुक. सबसे पहले एट 44, सुबह से काफी ट्रैफिक यहां पर था, बट इट लुक्स मच मच बेटर नाउ. जस्ट अ बिट ऑफ कंजेशन गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3. ट्रेड सेंटर पे आपको ट्रैफिक मिलेगा एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स ट्रेड सेंटर फ्रॉम बिजनेस बे एरिया. यहाँ पे 9 मिनट की देर है. Then there's 66 Dubai Alain Road pe, as you get out of Al Jadaf going towards Sheikh Zayed Road E11, you'll find 4-5 minute ki der. Then the usual congestion at the two main arteries, 311, E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Bit of congestion at S112 Sharjah Industrial Area 6 particularly. Then there is Medina Mall ke bahar at Beirut Street D62 heading south, you'll find a bit of congestion. Ribat Street ka traffic ab ho gaya hai smooth, there's no concerns out there. A bit of congestion also at Varsan 2 and Varsan 3 wala jo gol chakkar hai right close to Dubai Safari Park. In case you spot something, give me a call, 800-1062 par.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: Bollywood. On. लगे हाथों आपको creditmarket.ae के बारे में याद दिला दूं. इफ यू लुकिंग फॉर अ क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और मॉर्गेज, स्टार्ट विद creditmarket.ae. वन मोर वे Alfred कैन हेल्प. कॉल 800 Alfred, दैट्स 800 Alfred, और विजिट creditmarket.ae.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: It's 10:41 on the clock and let's take a look sabse pehle at ट्रेड सेंटर अराउंड अबाउट. इसकी तरफ जाता हुआ नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक है, राइट फ्रॉम बिजनेस बे ये ट्रैफिक शुरू हो जाता है. 7-8 मिनट की देर ऑलरेडी. लॉट्स ऑफ इवेंट्स हैपनिंग एट DWTC, सो बी केयरफुल, चेक द मैप्स बिफोर लीविंग. यू फाइंड द यूजुअल ट्रैफिक एट 75 एज वेल गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रेम एंड बिट ऑफ कंजेशन इन द जबील एरिया. ऑल्सो 71 गोइंग टुवर्ड्स दुबई मॉल इज अ बिट कंजेस्टेड. हल्का बुल्का ट्रैफिक आपको 44 पर मिलेगा अलखेल रोड, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3 एंड 66. Dubai Alain Road is also a bit congested going towards E11 from Al Jadaf.
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 The Beat of Bollywood.
2: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. InsuranceMarket.ae.
1: Big 106.2. That's my song.

0: बात है यार,
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: We hold a felon. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लड़ेगा?
3: यूं ही यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: लव।
1: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
2: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5pm. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. मिस किया गया?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: मैंने पूछा था कि अगर आपने 80s वाला ट्रेंड फॉलो किया है या नहीं किया है। मोहित, यस मोहित, बताइए।
3: नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया वो ट्रेंड को।
2: वाओ, हैट्स ऑफ। मतलब ये कोई मिलियन में से एक इंसान निकलता है जिसने फॉलो नहीं किया है।
3: क्योंकि हमको पता ही नहीं 80s में हम क्या कर रहे थे। बॉर्न हमारा 92 का है, हमको पता ही नहीं 80s में क्या कौन सी क्या थे, वही पता नहीं है हमको। एक चीज है, अगर इसमें कुछ ऐसा होता ना कि हम 80s में जाके कुछ कर सकते थे तो हाँ, थोड़ा सा गोल्ड या कुछ जमीन वमीन खरीद के वापस आ जाते थे।
2: ओह माय गॉड, मैंने भी एग्जैक्ट सेम चीज कहा था कि अगर 80s ट्रेंड में वापस जाना ही है तो फिर मैं यार 1000 bucks की मैं लैंड खरीद लेती हूँ।
3: कुछ ना कुछ लेके आते तो इधर जाके 5-10 मिनट में खरीद के वो सब करके वापस आते तो इधर अभी हम लोग कुछ ना कुछ तो होते तो पढ़ाई कर लेते तो शायद कुछ बन जाते, कुछ कर जाते। तो हम भी अपने बच्चे को बोलते कि भाई मैंने ये जमाने में ये पास किया था, तुम अभी कुछ नहीं कर रहे।
0: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5pm. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड आफ्टरनून 1:06।
1: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 37 degrees Celsius right now on this Tuesday afternoon. Humidity at 47%. Winds blowing at 18 kilometers per hour. Highs of 37, lows of 31 degrees Celsius.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. There.

0: Anyone can sell insurance when everything's fine. What matters is who shows up when it isn't. InsuranceMarket.ae. Here when it matters. Call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: गुटन टाग कहने की आदत तो हमें हो गई है, बिकॉज रोज सुबह हम लोग आजकल गुड मॉर्निंग नहीं कहते, गुटन टाग कहते हैं. जर्मनी की प्रिपरेशन चल रही है, द बिग चेक इन टू जर्मनी, दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट्स हैपनिंग ऑन द रेडियो. एंड क्या करना है आपको इसके लिए, यू गॉट टू सेंड मी अ व्हाट्सएप, बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम. आपको व्हाट्सएप करते रहना है 0543091062 दिन भर. नाउ आई डिड अ बिट ऑफ अ गूगल सर्च के गुटन टाग अगर गुड मॉर्निंग को कहते हैं, देन व्हाट डू यू एक्चुअली कॉल गुड आफ्टरनून. And guess what the correct answer is? The correct answer is Guten Tag. Guten Tag applies actually to good morning and to good afternoon. Aisa kyun hai? You can go and ask the Germans in person when we actually head out for this all expenses paid trip. This is that mauka that you have to maro a chauka on. To kya karna hai aapko iske liye? To get your name into the draw, get one step closer to winning this trip to Germany. Big check-in space taker apna naam. Aapko bhejna hai 0543091062. That's the WhatsApp number. 0543091062.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Two best friends, one dangerous mission, and chaos they never saw coming.
1: तुम दोनों हमारे लिए इंटेल कलेक्ट करोगे और इस मिशन का हिस्सा बनोगे.
0: Get ready for Vibe, starring Kunal Kemmu, Preeti Zinta, and Sparsh Srivastava. Directed by Kunal Kemmu.
2: This is the Vibe.
3: Lord, please मुझे बचा लो.
4: Lord, please मुझे बचा लो. नास्तिक से आस्तिक बन गए.
0: Vibe, releasing 18 September. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
5: Listen to her every day.
6: Mugembo, खुश हुआ.
7: Hi इशिता.
8: Hi मानसी.
7: यार ये डिज्नीलैंड की डीपी है क्या? रुको, how are you? बाद में करेंगे. Yes, are you at Disneyland?
8: Yes, Paris.
7: Paris एक का ट्रिप लेगी, अब जर्मनी का भी लेगी है. क्या करते हो इशिता घुमाई फिराई के अलावा?
8: I am a homemaker full time.
7: Very cute picture by the way, बहुत cute है.
8: Thank you so much.
7: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों yeah. जो है बालक और बालिका. हाँ. पापा के साथ रहेंगे?
8: दोनों बालिका है.
7: अच्छा.
8: हाँ.
7: रह लेंगे पापा के साथ?
8: यस यस.
7: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ट्रेन करा है पापा को इशिता ने. लेट्स सी आज शाम इशिता शॉर्टलिस्ट होती है कि नहीं. लेट्स सी कितनी अच्छी इनकी जर्मन नॉलेज है. ऑल द बेस्ट. आपका सवाल है, विच फेमस गेट इन बर्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लैंडमार्क्स इन जर्मनी? इज इट द गोल्डन गेट और द ब्रांडनबर्ग गेट या फिर इंडिया गेट?
8: द सेकंड ऑप्शन, ब्रांडनबर्ग गेट.
7: तो ये तुक्का लगाया कि पता था?
8: गोल्डन गेट इंडिया में ही है,
7: है? ये बहुत ज्यादा
8: सेकेंड ऑप्शन ही है.
7: विदेश यात्रा कर रही है, कह रही गोल्डन गेट जो है वो इंडिया में है. आपके घर का गेट तो नहीं है?
8: नहीं.
7: आप हो गई है शॉर्टलिस्ट.
8: Thank you.
7: Congratulations.
8: So much.
7: You're one step away for this check into Germany.
5: Okay. Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The big thrill with Mumsy. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
9: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
10: Right, it is a Tuesday afternoon and you'll find the usual suspects 311E11 पे heading southbound towards Dubai from Sharjah. थोड़ा बहुत traffic आपको मिलने वाला है, but the star of the show is going to be around DWTC. So यहाँ पर काफी सारे events हो रहे हैं. So please be careful. You never know when big time traffic might hit you. Might be a better day to take public transport today. In case you spot something, give me a call. Let me know. 800-1062 is the number.
5: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
11: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
5: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
1: This is the Big Mix with me, Sid, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. I'm filling in for Avni this afternoon. And an age-old debate has been re-chiroled by a veteran this time. Sameer Anjaan ka naam to aapne suna hi hoga. Back in those All India Radio days, I remember ke every other song used to be bol Sameer ke hain. So, haan, bhai, Sameer Anjaan is now in the news. Why? Because unhone bahut hi controversial cheez keh di hai. Ek aisi cheez jo koi bhi nahi keh raha aajkal. And that is, उन्होंने धुरंधर को क्रिटिसाइज कर दिया, धुरंधर के म्यूजिक को क्रिटिसाइज कर दिया. बट या व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, ही सेड कि ये जो रीमिक्सेस करने की आदत है ना, ये बहुत ही बुरी आदत है. इससे इसकी धुरंधर का जो म्यूजिक है, रीयूजेस ओल्डर सॉन्ग्स. हिज आर्ग्यूमेंट इज कि जो फिल्म मेकर्स यूज इट लाइक अ क्रच, एंड देन इससे क्या होता है कि लगता तो है कि जो क्लासिक्स हैं उनको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली यू आर डैमेजिंग द क्लासिक्स. हिज वर्ड्स नॉट माइंड, यू आर डैमेजिंग क्लासिक्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मेमोरेबल न्यू म्यूजिक. क्या लगता है आपको यार, ये जो रीमिक्सेस हैं, इज इट अ गुड आदत, अ बैड आदत? डू यू अग्री विद समीर अंजान और नॉट? आई एम गोना पुट अप अ पोल अबाउट दिस ऑन आवर इंस्टा. आवर हैंडल इज 106.2 बिग एफएम. दिस इज द बिग मिक्स एंड आई एम सिड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री
1: बनाएंगे। The Big Mix brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: InsuranceMarket.ae.

0: आईने की दुनिया ऐसी भी है,
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 2:06।
1: Bollywood.

0: one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. School's starting soon and we need a car.
2: And books, reforms, everything.
1: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
5: राइट, लेट्स टेक अ लुक एट 311 E11, जो यूजुअल आर्टरीज जहाँ पर ट्रैफिक रहता है, वहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत साउथ बाउंड ट्रैफिक है, लेकिन इन द राइट डायरेक्शन भी ट्रैफिक शुरू हो गया है ऑन E11, स्पेशली सेक्स जैद रोड पर आपको मिलेगा ट्रैफिक, एंड दिस इज अराउंड द ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट, क्यों ना हो मास्टर जी, वहाँ पर ATM जो चल रहा है, सो बी केयरफुल आउट देयर. देयर इज ऑल्सो बिट ऑफ कंजेशन अल जदाफ 66 पर दुबई अलेन रोड, एंड अ बिट ऑफ ट्रैफिक एट 44 एज वेल अल खेल रोड, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3. इन केस आपको कुछ दिखता है, एंड इफ इट्स सेफ टू call me on 800-1062.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Big 106.2. Big 106.2.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 3:06।
1: Bollywood.

0: Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo! खुश हुआ।
3: हाय इशिता।
4: हाय मानसी।
3: यार ये डिज्नीलैंड की डीपी है क्या? रुको, हाउ आर यू? बाद में करेंगे। आई यू एट डिज्नीलैंड?
4: पेरिस।
3: पेरिस एक का ट्रिप लेगी, अब जर्मनी का भी लेगी है।
4: हाँ।
3: क्या करती हो इशिता घुमाई फिराई के अलावा?
4: आई एम अ होममेकर फुल टाइम।
3: वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे, बहुत क्यूट है।
4: थैंक यू सो मच।
3: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों जो है बालक और बालिका पापा के साथ रहेंगे?
4: दोनों बालिका है।
3: अच्छा, रह लेंगे पापा के साथ?
4: यस यस।
3: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ट्रेन करा है पापा को इशिता ने। लेट्स सी आज शाम इशिता शॉर्टलिस्ट होती है कि नहीं। लेट्स सी कितनी अच्छी इनकी जर्मन नॉलेज है। ऑल द बेस्ट। आपका सवाल है, विच फेमस गेट इन बर्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लैंडमार्क्स इन जर्मनी? इज इट द गोल्डन गेट और द ब्रांडनबर्ग गेट या फिर इंडिया गेट?
4: सेकेंड ऑप्शन ब्रांडनबर्ग गेट।
3: तो ये तुक्का लगाया कि पता था?
4: गोल्डन गेट इंडिया में ही
3: है
4: शायद।
3: ये बहुत ज्यादा
4: सेकेंड ऑप्शन ही है।
3: विदेश यात्रा कर रही है, कह रही है गोल्डन गेट जो है वो इंडिया में है। आपके घर का गेट तो नहीं है?
4: नहीं।
3: आप हो गई है शॉर्टलिस्ट। Congratulations!
4: So
3: you're one step away for this check-in to Germany. Okay.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: Yeah, तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
6: मुझे खुद का पता था यार। अगर हूँ तो हूँ।
0: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: Good afternoon. It's 36 degrees Celsius right now. Humidity at 55%. Winds blowing at 21 kilometers per hour. Highs of 36, lows of 31 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

फिल्म जिसकी हम सब वेट कर रहे थे एंड दैट इज प्रियदर्शन ने एक बार हेरा फेरी से एग्जिट लिया, तो क्या फिल्म करेंगे? साइकोलॉजिकल थ्रिलर कॉल्ड हैवान एंड इट रिलीज लास्ट वीकेंड. इट्स नॉट डूइंग वेरी वेल. 7.5 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता आजकल की डेट में फॉर एन अक्षय कुमार सैफ अली खान प्रियदर्शन मूवी. इट्स रीमेक ऑफ साउथ इंडियन मूवी कॉल्ड ओपम. इट्स नॉट इवन अ शेड ऑन द ओरिजिनल. दैट्स वॉट पीपल सीम टू अग्री ऑन. एंड अक्षय कुमार को नेगेटिव रोल में लोग कम ही पसंद कर रहे हैं. बट द बिग हेडलाइन स्टोरी इज दैट द अदर फिल्म इज हनुमान अंश, विच इज लाइक अ कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ दिस फिल्म. बिल्कुल लो बजट 2 करोड़ में बनाई एंड दिस ऑलरेडी मेड 300 crores एंड 1400 स्क्रीन्स. हैवान हैज लॉस्ट टू हनुमान अंश. यू वुड एक्सपेक्ट द ऑपोजिट टू हैपन, राइट? कि इतना स्टार पावर, जितना स्टार पावर उतनी ज्यादा सक्सेस वाला जो फॉर्मूला है उसको सीरियसली चैलेंज करती हुई ये फिल्म है कॉल्ड हनुमान अंश, विच इज डूइंग सम अमेजिंग अमेजिंग बिजनेस. सो आगे आगे देखो होता है क्या बॉलीवुड में. You know, anybody and everybody who's tried to come up with the formula has always kind of failed. That is the beauty of Bollywood. Yeah, more filmo ki baatein, more food ki baatein coming up in just a while. This is The Big Mix with me, Sid. Good afternoon.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, 4:05।
1: Bollywood.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Good evening. It's 36 degrees Celsius right now. Humidity at 58%. Winds blowing at 19 kilometers per hour. Highs of 36, lows of 31 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे, आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

Big 106.2, but this is the Big Mix. So with me is Sid, the show there where we talk about food and films. And in the world of film, the biggest news coming out is the fact that I'm Batman. Agar aapko ye apni movie mein dalna hai, to now it is going to be absolutely free, but from 2035. So here's what the scene is. 1939 se jo DC ke paas Batman ka copyright hai, that is going to expire in 2035. So aap, main, koi bhi agar koi movie bana raha hai, usme Batman character ko aap bilkul muft डाल सकते हैं. या द कैरेक्टर बैटमैन इज नाउ फाइनली फ्री. द कैरेक्टर जो ऑरो को फ्री कराता है इन गॉथम सिटी, आयरोनिकली नाउ फाइनली जाकर आफ्टर सो मेनी इयर्स इट इज फ्री. द कैरेक्टर इज फ्री, बट हियर्स वेयर द कैच इज, बैटमैन को तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस कॉपीराइट एक्सपिरेशन डज नॉट अप्लाई टू द अदर कैरेक्टर्स इन द यूनिवर्स, जैसे कि जोकर है या इवन रॉबिन. यू कांट यूज दीज अदर पेरिफेरल कैरेक्टर्स ऑफ द विलन्स. इट ओनली अप्लाइज टू बैटमैन. सो इफ यू planning to make a film, short film, feel free to use Batman, but without the Joker. What do you think about this? Yes, I'll poll karta hun on our Insta page, 106.2 Big FM. That's 106.2 Big FM. That's our Insta handle. This is The Big Mix with me, Sid. Good evening.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Yeah, तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
4: मुझे खुद का पता था यार। अगर हूँ तो हूँ।
1: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: ticket brings many chances to win.
1: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
0: And 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
1: Buy now at BigTicket.ie.
2: This is an 18 plus game. Play responsibly.
3: Missed your morning buzz?
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ये सुनो।
5: दीप्ति कैसा लग रहा है आपको इस वक्त?
6: बहुत अच्छा लग रहा है।
5: But 13 and 16 were quite crucial ages ना? एक मतलब दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स की तरफ आग्रह कर रहे हैं।
6: Yes, एक बोर्ड एग्जाम की तरफ और एक
5: एंड द अदर वन इज जस्ट बोर्ड इन लाइफ।
6: या ही इज बोर्ड इन लाइफ एंड ही जस्ट यू नो टेक्स द हेल आउट ऑफ मी व्हेन ही कम्स होम। व्हेन दे आर बोर्ड तो उनका फेवरेट पास टाइम है ईटिंग। ये बना दो, वो बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो यस, यू हैव टू बी गुड इन कुकिंग, दैट्स इट।
5: मतलब वो दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है। ठीक है, सो हैव यू बीन टू जर्मनी बिफोर और इट्स गोना बी योर फर्स्ट टाइम?
6: फर्स्ट टाइम, या।
5: ठीक है, चलिए, तो आई एम गोना आस्क यू द क्वेश्चन, 10 सेकंड्स फॉर यू टू आंसर दैट क्वेश्चन, ऑलराइट?
6: या।
5: व्हाट पॉपुलर जर्मन स्ट्रीट फूड कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्रिल्ड सॉसेज सर्व्ड इन अ स्लाइस्ड ब्रेड रोल? ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज इट अ ब्रैटवर्स्ट, ऑप्शन बी इज इट अ टैको, या ऑप्शन सी इज इट अ हॉट डॉग?
6: द फर्स्ट वन, द ब्रैटवर्स्ट।
5: सही जवाब। बोलो थैंक यू सेठ।
6: थैंक यू सो मच सेठ, योर स्वीटहार्ट।
5: ऑलराइट, योर नेम गोज इनटू द
3: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सेठ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
7: ए जल्दी हटा, तेरा खटारा चल हटा। हां जल्दी हटा।
3: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: DWTC, Dubai World Trade Center के आसपास की सड़कें they are now getting quite congested. Also इसके चलते E11 Sheikh Zayed Road पर Trade Center roundabout is quite busy. Heading south and north आपको traffic यहाँ पर मिलने वाला है. Bit of congestion at JVC का junction at 311 44 का जो junction है down south right after Arabian Ranch, you'll find a bit of congestion there as well. A bit of northbound traffic going towards city center Mirdif on 311. In case you spot something, give me a call 800-1062 पर.
3: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: life, travels, or business. Over 30,000 Google reviews and even a metro station named after us. Call 800-ALFRED.
1: Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड. आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं. इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ फ्रॉम द शो. अवनी जॉइंस यू नेक्स्ट फ्रॉम 5 to 9. आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू टुमारो मॉर्निंग शार्प एट 7. द शो दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग इन द मॉर्निंग, इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. इन द मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस. वी आर 106.2 बिग एफएम. दैट्स आवर इंस्टा हैंडल. आई एम सिड सेठ, SIDSETH. टिल टुमारो, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर ट्यूजडे. बाय बाय.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी, आपके साथ 5 बज गए हैं, लेकिन मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, आज मैं 5 बजे ज्वाइन कर लेती हूँ. यूएई समर हाइबरनेशन इज ऑफिशियली ओवर. 5 नए आउटडोर एक्टिविटीज आ रहे हैं एंड वी शुड बी गेटिंग रेडी टू वेलकम देम बैक. व्हाट इज इट अबाउट, बात करते हैं स्पैंडल, देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 5:10। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: insurance gave you more than insurance. Buy anything from insurancemarket.ae and get My Alfred Premium free for 1 year. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ दिस टाइम आज के दिन द बिग थ्रिल पर. लेकिन एक और थ्रिल जो लाइफ में वापस आ चुका है वो है आउटडोर एक्टिविटीज. वेदर ठीक होने के साथ ही ये जो एसी वाली हाइबरनेशन है ना खत्म हो जाती है. ग्लोबल विलेज ओपन्स अक्टूबर 14th. इट्स द 31st सीजन रनिंग टिल मई 2027. एंड जैसे मैंने बताया था कि यार ग्लोबल विलेज मैं पूरा नहीं घूम पाई थी, लेकिन दिस टाइम ये मई तक खुला है. चाहे मुझे हर दिन हर हफ्ते क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं कोना कोना घूम के आऊंगी बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव्ड ग्लोबल विलेज. एंड जस्ट नॉट दैट, फोर मोर एक्टिविटीज कमिंग बैक दिस विंटर सीजन. व्हाट आर दोस, बात करते हैं इस पर. लेकिन फिलहाल तो यार जैसे ही बाहर निकलते थे इस हाइबरनेशन से, ऐसा फील होता था, लेकिन अब नहीं होगा बिकॉज ऑफ द गुड वेदर. नाउ बात करते हैं इस पेंडल, देन कीप इट लॉक्स टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: I can't wait.
2: Okay, okay. 3, 2, 1.
1: Yes!
3: Here you go, sir. Enjoy your Papa John's new pan pizza.
1: Whoa, cheese all around.
2: And edge-to-edge toppings.
1: And crispy garlic parmesan crust, too.
2: Let me try.
1: Order your own.
3: Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Are ho, Samba. तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
4: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
4: चलो चले अलराज।
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Dubai Marina, JLT and Motor City are looking fairly smooth, but there are slower patches on E44 Al Ghail Road, particularly around Business Bay, Dubai, Design District. E311 पर भी आपको काफी congestion मिल जाएगा around Discovery Gardens and JVC connections. अगर आप Sharjah वाली side जा रहे हो, of course यहाँ पे traffic है E11 पर connecting roads all around Al Mamzar and Al Khan. कहीं और फंसे हो, let me know, call करके 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
7: Sardar Khan naam hai hamara. Bata dijiyega sabko.
8: Goli nahi marenge sare ko. Keh ke lenge uski.
0: Big 106.2.

0: Well, that's actually me. बात हो घूमने फिरने की और मैं ना बोलू नहीं हो सकता.
1: The Big Thrill on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड दुबई सफारी पार्क इज सेट टू री ओपन ऑन अक्टूबर 12. अक्टूबर में बहुत चीजें खुल रही हैं, बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज री ओपन हो रही हैं. दिस इज वन ऑफ देम. इट्स विद द न्यू सीजन जहां पर बोला जा रहा है लिव मोर वाइल्ड लाइफ. बेसिकली दिस वन इज गोइंग टू focus on wildlife, nature and conservation. The big new addition is the Royal Safari Experience. Premium hai, private, 4-hour experience hai. Groups ja sakte hain, 10 people. And just not that, yaar, kyunki ye safari experience hai na, guess what? Ghoomne ki baatein karti rehti hu, par maine abhi tak safari experience nahi kiya tha.

0: Big Two.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. School's starting soon and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
0: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
0: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: एहसान का भी कॉल आता है, ही वाज टेलिंग कि वो अलगजेज में ट्रैफिक में फंसे हैं, जस्ट नॉट अलगजेज, यहाँ पर अगर आप देखो E11, E311 पर भी हैवी ट्रैफिक है अराउंड अलमज़ार, अलखान, मोहेजना एंड एयरपोर्ट स्ट्रेच. अलगील रोड E44 पर आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिल जाएगा अराउंड रासलखोर, दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट एंड बिजनेस वे. अलगरूद, डेरा एंड ऊद मेहता वाली साइड भी आपको हैवी कंजेशन मिल सकता है. कहीं और फंसे हो आप, कॉल मी 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
6: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ. देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है. फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे.
0: 106.2, the beat of Bollywood.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: माशो का ट्रैक फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2। एंड इफ यू रिमेंबर, इस वीडियो में ना रोड ट्रिप पे हैं ये तीनों लोग, लेकिन अगर आप वो रोड ट्रिप मिस कर रहे हो, ये मिस बिल्कुल मत कर देना।
1: द बिग थ्रिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। इट्स ट्यूसडे इवनिंग एंड ट्यूसडे व्हाट अ डे यार, कि आप अपने ट्रिप प्लान करो, टूर प्लान करो। बट द गुड पार्ट इज आपको प्लान करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रजिस्टर करने की जरूरत है अपना नाम कैसे फॉर द बिग चेक इन टू जर्मनी। टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062। बिकॉज आर यू रेडी फॉर दिस मटरगश्ती?
2: मटरगश्ती खुली सड़क में तगड़ी तड़क।
0: तो व्हाट्सएप नंबर फ्री है यार 0543091062। खेलूंगी आपके साथ एक जीके का कॉन्टेस्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज नहीं, जर्मन नॉलेज इट इज। इन द नेक्स्ट आवर, टिल देन कीप इट लॉक्स टू बिग 106.2।

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज ट्यूजडे इवनिंग एंड अगर आपने अभी तक अपनी कोई ट्रिप वेकेशन प्लान नहीं किया है, हम पे छोड़ दो यार, हमने प्लान कर लिया है. ऑल यू हैव टू डू इज रजिस्टर विद अस, टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062. इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू बिग चेक इन टू जर्मनी विद अस.
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 6:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Introducing Alfred Coins, the new way insurancemarket.ae rewards you. Buy insurance. Earn Alfred Coins. Enjoy rewards. Call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Thrill on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द ट्यूजडे इवनिंग एंड मैं जरा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि सितंबर में ना, सितंबर भी नहीं, इनफैक्ट इस साल में ना बहुत लोगों के ब्रेकअप हो गए यार. क्या ऐसा क्या साल था मुझे नहीं समझ में आ रहा. लेकिन एक चीज जो आप हर ब्रेकअप के बाद करते हो, हर हार्ट ब्रेक के बाद करनी भी चाहिए, दैट इज टू गो ऑन अ ट्रिप. आप पता क्या करते हो, एक्चुअली यू फाइंड योर सेल्फ वहां जाकर. विश करना ही है तो यार पहले खुद से कर लेते हैं. एंड दिस ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप पे जाने के लिए आपको करना क्या है, बिग चेक इन स्पेस योर नेम टाइप करना है एंड भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल, पूछूंगी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, नॉट लव रिलेटेड यार, कम ऑन, आपके एक्स के बारे में मैं नहीं पूछने वाली. एक जीके का सवाल, नॉट द जनरल नॉलेज, द जर्मन नॉलेज. कहां पर आपको मैसेज करना है, 0543091062. लेट्स सी कि आज किसका नाम रजिस्टर होता है फॉर दिस बिग चेक इन टू जर्मनी.
1: पार्टिसिपेट इन द बिग चेक इन कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर, डैन्यूब प्रॉपर्टीज. टाइटल स्पॉन्सर, पापा जॉन्स. एसोसिएट स्पॉन्सर्स, फोर्ड एंड शराफ डीजी. ट्रैवल पार्टनर, एएफसी हॉलीडेज. एक्सक्लूसिवली ऑन बिग 106.2.

0: 101.2. The Beat of Bollywood.
1: What I'm about to tell you, don't tell anyone.
2: Why are you whispering?
1: Because if everyone finds out about Papa John's new pan pizza, good luck getting one.
2: For pizza? Have you seen it? Cheese all around, edge-to-edge toppings, crispy garlic parmesan crust.
3: My mouth just watered.
4: Try the new pan pizza today. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
5: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany, only on Big 106.2.
0: Missed your morning buzz?
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
0: ये सुनो।
7: दीप्ति कैसा लग रहा है आपको इस वक्त?
8: बहुत अच्छा लग रहा है।
7: But 13 and 16 were quite crucial ages ना, एक मतलब दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स की तरफ आग्रह कर रहे हैं।
8: Yes, एक बोर्ड एग्जाम की तरफ और एक
7: एंड द अदर वन इज जस्ट बोर्ड इन लाइफ
8: या ही इज बोर्ड इन लाइफ एंड ही जस्ट यू नो टेक्स द हेल आउट ऑफ मी व्हेन ही कम्स होम व्हेन दे आर बोर्ड तो उनका फेवरेट पास टाइम है ईटिंग ये बना दो वो बना दो ये कर दो वो कर दो तो यस यू हैव टू बी गुड इन कुकिंग दैट्स इट
7: मतलब वो दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है ठीक है सो हैव यू बीन टू जर्मनी बिफोर और इट्स गोना बी योर फर्स्ट टाइम
8: फर्स्ट टाइम या
7: ठीक है चलिए तो आई एम गोना आस्क यू द क्वेश्चन 10 सेकंड्स फॉर यू टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑलराइट
8: या
7: व्हाट पॉपुलर जर्मन स्ट्रीट फूड कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्रिल्ड सॉसेज सर्व्ड इन अ स्लाइस्ड ब्रेड रोल ऑप्शंस ऑप्शन ए इज इट अ ब्रैटवर्स्ट ऑप्शन बी इज इट अ टैको या ऑप्शन सी इज इट अ हॉट डॉग
8: द फर्स्ट वन द ब्रैटवर्स्ट
7: सही जवाब बोलो थैंक यू सेड
8: थैंक यू सो मच सेड योर स्वीटहार्ट
7: ऑलराइट योर नेम गोज इनटू द
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
11: आपको लग रहा है आपकी बंदी की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा है नो नो चेक द ह्यूमिड लेवल्स एज ऑफ नाउ इट्स 61% 35 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है बट इट एक्चुअली फील्स लाइक 45 ओनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड लेवल्स इट्स ऑन 61%
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: The Big Thrill on Big 106.2.
0: The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग थ्रिल एंड टाइम हो चुका है आपका जर्मनी जाने का. आज जिसको मैंने कॉल किया है वो है हितिका. हाय हितिका.
3: हाय अवनी, हाउ आर यू?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
3: बस बढ़िया.
2: क्या करते हो आप हितिका?
3: आई वर्क फॉर अ बैंक हियर.
2: व्हाई डू यू थिंक यू नीड अ वेकेशन?
3: आई थिंक आई नीड अ वेकेशन एवरी वन मंथ.
2: ये तो मतलब वो होगा कि मुझे 12 महीने 12 छुट्टी चाहिए, 12 वेकेशन चाहिए.
3: Absolutely.
2: And when was the last time you had a vacation?
3: One month ago.
2: Okay, so when you say you are actually busy, you're busy taking vacations. Now I understand.
3: Busy planning for the next one at least.
2: बहुत अच्छी बात है यार. एटलीस्ट कोई भी प्लानिंग करनी है लाइफ में तो ये वाली करो, एटलीस्ट मुकम्मल तो होगी यार.
3: Absolutely true.
2: Okay, okay. We're gonna start with the GK contest, the German knowledge contest. Are you ready?
3: Yes, absolutely.
2: Okay, so मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपको सोच समझ के जवाब देना है, लेकिन इन 10 seconds, okay?
3: Okay.
2: सवाल ये है कि आपको मुझे बताना है विच डिलिशियस जर्मन डेजर्ट इज मेड विद चॉकलेट, चेरीज एंड व्हिप्ड क्रीम. ऑप्शंस आर ए ब्लैक फॉरेस्ट केक, बी एप्पल पाई, सी चीज केक.
3: ब्लैक फॉरेस्ट.
2: नहीं, आप एप्पल बोले मले थे आप.
3: नहीं, मैं ऑप्शन ए बोल रहा
2: हूं. नहीं, आप देख लो, आप सोच लो, है अभी टाइम.
3: नहीं, आई एम गुड विद ब्लैक फॉरेस्ट.
2: ओके, कांग्रेचुलेशंस. हितिका ने सही जवाब दिया है. आपका नाम आज के लिए बिग चेक इन टू जर्मनी में रजिस्टर हो चुका है. मुबारकबाद.
3: थैंक यू सो मच.
2: अब आप इतनी अच्छी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप इतना प्लानिंग करते हो, अब अपने ये ट्रैवल प्लान में क्या क्या ऐड करने वाले? OOTD रेडी है आपका?
3: नहीं, वो रेडी नहीं है, बट ब्लैक फॉरेस्ट जरूर मुझे देखना है.
2: देखना है, खाना नहीं है.
3: देखो, खाना तो आप खिला ही दोगे, दिखा भी दोगे तो बढ़िया.
2: ओके, थैंक यू सो मच हितिका.
3: थैंक यू, बाय
2: बाय. अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है बिग चेक इन टू जर्मनी में, करना कुछ नहीं है, बस टाइप करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग थ्रिल. ट्यूसडे इवनिंग चल रहा है, लेकिन यार एक चीज़ की जो मुझे खुशी होती है ना हर रोज, कि यार अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना है. एंड ये ख्याल ही मुझे बहुत खुशी दे देता है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर मैं तो एग्जैक्टली सेम फील करती थी, लेकिन आप इस फीलिंग को स्किप कर सकते हो. गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव, रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 धरम पर मंथ, फ्लैट रेट फॉर द ईयर, जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स. अब ये याद कर लो कि आपकी स्कूल तक की राइड और स्मूथ हो सकती है. और ध्यान से, कल छुट्टी नहीं है, कल भी स्कूल जाना है. कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग थ्रिल. ट्यूसडे इवनिंग चल रही है, लेकिन द गुड पार्ट इज फ्यू थिंग्स आर बैक, क्योंकि विंटर सीजन आने वाला है तो बहुत सारी नई नई चीजें हैं, वापस खुल रही हैं, रीओपन हो रही हैं. दुबई मेरिकल गार्डन इट इज, लीवा फेस्टिवल आने वाला है, एंड जस्ट नॉट दैट, दुबई क्रोकोडाइल पार्क एज वेल. क्या टिकट प्राइस है, कब जा सकते हो, कौन सी डेट को ओपन हो रहा है, गोना टॉक अबाउट दैट इन अ बिट. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 7:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: earns kilometers. Now your car insurance earns rewards. Buy from insurancemarket.ae and earn Alfred coins. Call 800 Alfred.
1: The Big Thrill on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड विंटर स्पोर्ट्स जो है वापस आ चुके हैं. स्पोर्ट्स नहीं एक्चुअली यार, विंटर आउटडोर एक्टिविटीज जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था. निकल गई गर्मी यार, ये हाइबरनेशन खत्म होने वाली है. इफ यू लुकिंग फॉर अ विंटर रोड ट्रिप, लीवा हैज टू बी ऑन योर लिस्ट. द लीवा इंटरनेशनल फेस्टिवल इज बैक दिस डिसंबर. 23 डेज का ये फेस्टिवल होने वाला है. क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? रोरिंग इंजन्स, डेजर्ट एडवेंचर्स, इमराती कल्चर, लाइव एंटरटेनमेंट एंड ऑफकोर्स द लीवा ड्यून्स, जिसके बारे में मैंने इतना सुना है. लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज द नाइट एंटरटेनमेंट. ये जो फायरवर्क्स होते हैं, ड्रोन शोज होते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार. And the previous edition attracted more than 7 lakh visitors. इस बार कितने लाखों में होते हैं पता नहीं, लेकिन उन लाखों में एक इकलौती मैं तो जरूर होंगी जहाँ पे पार्टी की बात हो. कॉल करके 800-1062 पर कौन सी विंटर आउटडोर एक्टिविटीज के लिए आप एक्साइटेड हो. 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: 105.2.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae.
3: Creditmarkets.ae. Don't chase banks, come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
4: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata.
0: ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
5: E11 पर आपको काफी हेवी ट्रैफिक मिलेगा टुवर्ड्स शारजा, पर्टिकुलरली फ्रॉम अल ममजा थ्रू अल खान एंड इनटू सेंट्रल शारजा। E44 अल खेल रोड पर भी कंजेशन मिलेगा आपको अराउंड बिजनेस बे, दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट एंड नादल शिबा। E311 डिस्कवरी गार्डन, D61 पर JVC एंड सर्कल मॉल की तरफ भी आपको काफी पैची ट्रैफिक मिलेगा। बट इनफैक्ट मरीना, JLT, मोटर सिटी या फिर स्पोर्ट्स सिटी में अगर आप हो तब कंपैरेटिवली लाइट ट्रैफिक है। कहीं और फंसे हो लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर।
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Big.

0: Hollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. School's starting soon and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
0: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
0: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The big mix miss kiya gaya.
5: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
6: मैंने पूछा था कि अगर आपने 80s वाला ट्रेंड फॉलो किया है या नहीं किया है। मोहित, यस मोहित, बताइए।
7: नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया वो ट्रेंड को।
6: वाओ, हैट्स ऑफ। मतलब ये कोई मिलियन में से एक इंसान निकलता है जिसने फॉलो नहीं किया है।
7: क्योंकि हमको पता ही नहीं 80s में हम क्या कर रहे थे। बॉर्न हमारा 92 का है, हमको पता ही नहीं 80s में क्या कौन सी क्या थे, वही पता नहीं है हमको। एक चीज है, अगर इसमें कुछ ऐसा होता ना कि हम 80s में जाके कुछ कर सकते थे तो हाँ, थोड़ा सा गोल्ड या कुछ जमीन वमीन खरीद के वापस आ जाते थे।
6: ओह माय गॉड, मैंने भी एग्जैक्ट सेम चीज कहा था कि अगर 80s ट्रेंड में वापस जाना ही है तो फिर मैं यार 1000 bucks की मैं लैंड खरीद लेती हूँ।
7: कुछ ना कुछ लेके आते तो इधर जाके 5-10 मिनट में खरीद के वो सब करके वापस आ जाते, तो इधर अभी हम लोग कुछ ना कुछ तो होते तो पढ़ाई कर लेते तो शायद कुछ बन जाते, कुछ कर जाते। तो हम भी अपने बच्चे को बोलते कि भाई मैंने ये जमाने में ये पास किया था, तुम अभी कुछ नहीं कर रहे।
0: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: E11 पर आपको काफी हैवी कंजेशन मिलेगी फ्रॉम अल बमजार अल खान एरिया टुवर्ड्स सेंट्रल शारजा। E311 पर भी स्लोअर सेक्शंस है अराउंड डिस्कवरी गार्डन्स, वाइल E44 अल खेल रोड पर आपको कंजेशन मिलेगा बिजनेस बे, दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट एंड नादल शिबा के अराउंड। JVC एंड D61 नियर सर्कल मॉल राउंड अबाउट भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। कहीं और फंसे हो लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर।
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: एग्जैक्टली दिल ना यही वाइब करता है यार जब आपको कोई विन विन सिचुएशन मिलती है. अब आप बोलोगे लाइफ में विन विन सिचुएशन मिलती कब है अवनी?
1: द बिग थ्रिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड विन विन सिचुएशन होती है यार जब ये फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं. हो जाती है गणपति के साथ फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है. अब नवरात्रे आने वाले हैं. सो दिस नवरात्रे यू कैन एक्सपीरियंस द फेस्टिव सूक एग्जीबिशन ऑन 26th ऑफ सितंबर फ्रॉम 10 AM टू 10 PM एट अल्मास कॉन्फ्रेंस सेंटर राइट आउटसाइड JLT मेट्रो स्टेशन. बताती हूँ विन विन कैसे है. You can shop from 45 plus exhibitors featuring festive fashion, sarees, jewelry, home decor, food and bahut kuch. Aur sirf aapke liye nahi, bachchon ke liye bhi activities hain, exciting competitions hain. UAE's Got Talent Season 8 ka grand finale bhi wahan hoga. And then plus chances to win staycations and dinner vouchers. हुआ ना विन विन. अभी भी नहीं हुआ है तो बता देती हूँ, एंट्री फ्री है, पार्किंग भी फ्री है. Brought to you by Kids Aras with Divalicious Beauty Salon, Jewelry Partner Biani Jewels, Bhulla Math, 26th of September, 10 AM to 10 PM. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: when she is on air, wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. मानसी आज छुट्टी पे है एंड दैट इज व्हाई आई एम फिलिंग अप. लेकिन ये फोर्थ आवर ऑफ द शो खत्म होने वाला है. मेरा शो ये लास्ट आवर है. बट इमेजिन करो यार, आप आबू धाबी लैंड करते हो, ठीक है, एंड यू हॉप ऑन अ शटल टू द इतिहाद स्टेशन. अपनी पूरी यूएई की ट्रिप बाकी की आप ट्रेन पे करते हो एंड नाउ ये जर्नी के लिए आप बुक कर सकते हो. अभी नहीं बट पोटेंशियली क्या क्या एक्सप्लोर हो रहा है बताती हूँ. बिट अंटिल देन कीप इट लॉक्ड ओनली ऑन बिग 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: Compare before they buy, especially insurance. Let insurancemarket.ae find you great cover at a great price. Why pay more? Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड इमेजिन करो अगर आप अबू धाबी में लैंड करते हो, यू हॉप ऑन टू अ शटल फॉर इतिहाद रेल स्टेशन एंड यू कंटिन्यू योर यूएई ट्रिप बाय ट्रेन. ये हो सकता है, पॉसिबल है, कब होगा ये नहीं पता है. सो इतिहाद एयरवेज एंड इतिहाद रेल आर एक्सप्लोरिंग अ न्यू एयर एंड रेल ट्रैवल सिस्टम अक्रॉस यूएई. अब इससे होगा क्या अगर ये हो जाता है तो? ए, ऑफ कोर्स आप बेटर कनेक्शन हो सकता है इंटरनेशनल विजिटर्स का ट्रैवलिंग फ्रॉम अबू धाबी टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूएई. दूसरा, ये जो एयर प्लस रेल का सिस्टम है ये आप इकट्ठे बुक कर सकते हो, दैट वुड बी इंटीग्रेटेड एयर प्लस रेल बुकिंग्स. तीसरा, देयर वुड बी डेडिकेटेड एयरपोर्ट शटल्स बिटवीन जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द मोहम्मद बिन जायद सिटी पैसेंजर रेल स्टेशन. तो बेसिकली अब आपको प्लेन का मजा और रेलवेज का मजा इकट्ठे मिल सकता है. एंड यू नो दैट्स हाउ वी दुबई इट. कितना सिंपल सिस्टम क्रिएट होने वाला है. कब होगा, लॉन्च डेट कब होगी, रिलीज नहीं हुआ अभी. आएगा, soon, keep it locked to Big 106.2, the Beat of Bollywood.

0: The Big Thrill on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस लास्ट वीकेंड हिवान फिल्म रिलीज हुई थी विच वाज सैफ अली खान स्टारर फिल्म एंड क्या बढ़िया काम किया यार. मतलब यू विल बी इन ऑ ऑफ सैफ अली खान. ही एट अक्षय कुमार. हालांकि अक्षय कुमार विलन थे बट कमिंग वीकेंड रिलीज होने वाली है करीना कपूर खान की मूवी दायरा. देख रहे हो आप वीकेंड बाय वीकेंड क्या पावर कपल है यार.
2: हंसती रहे तू हंसती रहे हया की लाली खिलती रहे.
1: I have watched Hewan. I will watch Zaira. Let's see के दोनों में से better कौन सी रहती है because of course Hewan भी next weekend तक तो चलेगी ही. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है बता दूं it's a one time watch mystery film है इसलिए आप एक बार जाके जरूर देख सकते हो. Until then keep it locked to Big 106.2.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से भूलू भूलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, जिसका फिलहाल हो रहा जाने का टाइम, पर आपको पता है ना मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन। ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम इंस्टा हैंडल। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो अवनी आर के पेज पर, AVNIY AAAR। एंड अभी अभी ना मैंने और मानसी ने एक रील डाली है, फन चैलेंज है। अगर आपको लगता है यू कैन एक्चुअली गेस इट, डू कॉमेंट कि हम कौन से एक्टर्स का बात कर रहे हैं। गो वॉच दैट रील ऑन 106.2 बिग एफएम। एंड मैं मिलती हूँ आपको कल फिर से ऑन द बिग मिक्स। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट of Bollywood. Good night.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ।
3: हाय इशिता।
4: हाय मानसी।
3: यार ये डिज्नीलैंड की डीपी है क्या? रुको, हाउ आर यू? बाद में करेंगे। आई यू एट डिज्नीलैंड?
4: पेरिस।
3: पेरिस एक का ट्रिप लेगी, अब जर्मनी का भी लेगी है?
4: हाँ।
3: क्या करती हो इशिता घुमाई फिराई के अलावा?
4: आई एम अ होममेकर।
3: वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे, बहुत क्यूट है।
4: थैंक यू सो मच।
3: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों yeah. जो है बालक और बालिका पापा के साथ रहेंगे?
4: दोनों
3: बालिका है। अच्छा, रह लेंगे पापा के साथ?
4: यस यस।
3: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ट्रेन करा है पापा को इशिता ने। लेट्स सी आज शाम इशिता शॉर्टलिस्ट होती है कि नहीं। लेट्स सी कितनी अच्छी इनकी जर्मन नॉलेज है। ऑल द बेस्ट। आपका सवाल है, विच फेमस गेट इन बर्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लैंडमार्क्स इन जर्मनी? इज इट द गोल्डन गेट और द ब्रांडनबर्ग गेट या फिर इंडिया गेट?
4: द सेकंड ऑप्शन, ब्रांडनबर्ग गेट।
3: तो ये तुक्का लगाया कि पता था?
4: गोल्डन गेट इंडिया में ही है शायद।
3: ये बहुत ज्यादा
4: सेकंड ऑप्शन ही है।
3: विदेश यात्रा कर रही है, कह रही है गोल्डन गेट जो है वो इंडिया में है। आपके घर का गेट तो नहीं है?
4: नहीं।
3: आप हो गई है शॉर्टलिस्ट। Congratulations!
4: So
3: you're one step away for this check into Germany. Okay.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Love, lo-fi, and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यही 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पाँच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on the Big Chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Chill. Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

Big 106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.